0: तो हमारे लिए तो कोई पैदावार नहीं वहाँ।
1: वी हैव ट्राइड टू बिल्ड अवर सिटीज अवर इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द वे दैट वी एक्चुअली टेक अवे रिसोर्सेज फ्रॉम द एग्रीकल्चर एंड गिव इट टू द अर्बन एरियाज।